देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि अल्लाह से छुप जाएं। सुन रखो, जिस वक्त ये अपने कपड़ों में लिपट रहे होते हैं तब भी वो इनकी छुपी और खुली बातों को जानता है। वो तो दिलों की बातों तक से आगाह है और जमीन पर कोई चलने फिरने वाला नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है। वो उसके रहने की जगह को भी जानता है और जहां सौंपा जाता है उसे भी। ये सब कुछ किताब रोशन में लिखा हुआ है और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ऐ नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डूंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: रफ्तार भी, रिश्ता भरोसे का।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN।
2: ऑपोजिशन भी पूछे, पाकिस्तान की हर शहरी ये सवाल करे कि ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोर्ट के हैं कि हम ये बर्दाश्त करें। कोई वजीरे इस मुल्क का वजीरे दिफा ऐसे बात करे कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं।
3: पीपल्स पार्टी चेयरमैन जे दिफा बारे वजीर से सख्त तनकीद, वजीर आजम के वजीरन के कंट्रोल करने जो मशवरो नहीं छोड़ो। कौमी असेंबली में खिताब कर बिलावल भुट्टो जरदारी चे तो वजीर आजम मेहनत से कम कर है। आजाद कश्मीर जो मसलो सियासी अंदाज में हल वही पर एक वफाकी वजीर बात थियल छिड़की विधी के भड़कायो। वजीर अजा ताई माफी वठन लाय भी तैयार ना। रावला कोट के शहरों के कश्मीरी न समझदड़ वजीर छो है। वजीर आजम के पैं टीम के कंट्रोल कर घुर्जे। जैसे को वजीर चवे तो असा 12 सीटू खीसे में खड़ी इंदा आयु तो असा किए साथ दियं। राजा परवेद अशरफ ख्वाजा आसिफ के बयान वापस वठन जो मौको दिनों। दिफा वारो वजीर माफी वठन लाय भी तैयार ना। कश्मीर मसले के हल लाय मौलाना फजल रहमान के किरदार अदा करण दिनों वे। एहतजाज कंदड़न लाय सियासी रस्तो इख्तियार कर वे। दिफा वारो वजीर ख्वाजा आसिफ कश्मीर बाबत दिनल बयान ते कायम। रावला कोर्ट बाबत बयान ते माफी वठन का भी इनकार। कौमी असेंबली में गालाईंदे दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ चयो त बर्थ सर्टिफिकेट सां केर भी पाकिस्तानी या कश्मीरी नथो थी सघे। बयान ते वजाहत ॾेई चुको आहियां। अपोजिशन माज़ी जूं ग़लतियूं विसारे मिसा खे जमहूरियत ते सहियूं करे। मिसा खे जमहूरियत में बहितरी जी गुंजाइश आहे त उनखे दुरुस्त कयो वञे। अमली जो ऐलान कर कमेटी जो खत हुकूमत दा मोकलो है पर अजा ताई जवाब न मिली। में गालाईंदे JUI सरबरा मौलाना फजल रहमान चयो है त माण्हू वॾे अंग में रावला कोर्ट में मौजूद आहिनि। हुननि मुज़फ़राबाद तरफ़ मार्च बि मुलतवी कयो आहे। ॻाल्हियूं थियण घुर्जन, संदर मुतालबनि खे ॾिसण घुर्जे। तकरीर जे बुनियाद ते तशदुद न थियण घुर्जे। ख्वाजा आसिफ जहिड़ा बयान कावड़ वधाईंदा आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर तौर ख्वाजा आसिफ खे अहिड़ा बयान न ॾियण घुर्जनि। वज़ीर आज़म वेड लाइ ख्वाजा आसिफ ऐं ठाह लाइ इसाक डार खे रखियो आहे। पार्लियामेंट में जज़्बाती ॻाल्हियूं थियूं आहिनि, हीउ वक़्तु बर्दाश्त करण जो आहे। जज़्बाती रद अमल हुकूमत खे नथो सुहाए। चूंडू रोकण ऐं जथनि ज़रिए इलेक्शन रोकराए सघिजे थी।
1: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की सुनते रहो GAFM 9।
5: लफ्जी तर्जुमी पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली व तम्मत कलिमत रब्बिक सिदकम व अदला। और तेरे रब की बात सच्चाई
7: है। अगर आखिरत से गाफिल होकर सिर्फ दुनिया के लिए आप जी रहे हैं तो नुकसान क्या हो सकता है? आखिरत में वो आमाल जो अल्लाह के लिए ना किए गए हों वो जाया हो जाएंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरा हबितत आमालुहुम। क्यों? इसलिए कि मौत के बाद आने वाली दुनिया वो जिंदगी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो याख़ुज़ू बिअहसनिहा करते हैं, और दूसरी किस्म के लोग वहां इग्नोर कर दिए जाएंगे, नजरअंदाज कर दिए जाएंगे। जिस तरह मौजूदा जिंदगी में इस दुनिया में उन्होंने अल्लाह की बात और अल्लाह की आयात को इग्नोर कर रखा है, निगलेक्ट कर रखा है, नजरअंदाज कर रखा है, उससे गफलत बरत रहे हैं। यानी ये एक लाजमी नतीजा है ना इस बात का। आज अगर कोई शख्स अल्लाह की आयात के मुकाबले में अपने आप को बड़ी चीज समझता है कि नहीं मुझे नहीं जरूरत इस किताब को पढ़ने की, अगर कोई अपने आप को बड़ी चीज समझता है इसके मुकाबले में और इससे गफलत इख्तियार किए हुए वो इसको इग्नोर कर रहा है, कि क़यामत के दिन उसका लाजमी नतीजा ये नहीं निकलना चाहिए कि उसको भी इग्नोर किया जाए? जो आज इसको तवज्जो नहीं देता कल उसको कौन तवज्जो देगा? आज इससे आप वफादारी नहीं दिखा रहे कल आपके साथ कौन वफादारी करेगा? आज आप इसको

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

यूरोपी रांद जंग में अमरीका जो साथ न डिनो नेटो का मायूस आया। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली सहकार न कर असा के मदद की जरूरत न हुई, पर यूरोपी मुल्क सहकार कना तो सुठो लगे। हा अमरीका ईरान का वे फर्क से जंग खटी है। ईरान हर इं गाल मनी रो है जहां अमरीका चाहे तो। ईरान आबन हुरमज में टूल टैक्स या इंश्योरेंस की रकम वसूल न कह। अमरीकी सदर ट्रंप जो नेटो चीफ मार्क रोटी से गड मीडिया से गाल। सदर ट्रंप ईरान के फंड्स जारी करण की तरदीद कन्दे है तो ईरान के मंजमंद फंड जारी नाहन कया। असा के ईरान के पैसा डण की जरूरत ना। ईरान के अमरीकी आबादगर का खुराक खरीद करनी पवी और उ पैसा मंजमद ईरानी फंड्स में काटिया वा। ईरान अमरीका की रोज तब्दील थी बयानों से खदशा जाहिर कर छा। ईरानी परी खाते तजमार इस्माइल बाघाई है तो एमओयू बाबत अमरीका जहा तकारी बयान सामू अची रहा है। अड़ा बयान ईरानी अवाम के अदम इतम से घट कर में मददगार साबित ना। अमरीका के एमओयू के वाजे मतन के उबतर तशरीन का पासो कर घुर्जे। अमरीका के पैं जिम्मेवार वायदन के पूरा कर घुर्जे। कराची में जाल के कत्ल केस में गिरफ्तार थियल शख्स पुलिस के तहवील में फौत। पुलिस मौजूद तैमूरिया थाने से जवाबदार मोहम्मद खान क्लास में जाल जो कत्ल केस दाखिल थियल है। पुलिस कार्रवाई करे जवाबदार मोहम्मद खान गिरफ्तार करे जोहराबाद जांच पुलिस हवाले किया हो। पूछा गाछा दौरान जवाबदार की तबियत खराब थी वही जिन सब खे अस्पताल मुंतकिल किया वो जिते उन्हें दम दई छो। आई कराची के इलाके सरजानी टाउन में जाल ए मुड़स विच तलाक मामले चिकटाण त जवाबदार पैं दह साल मासूम पुट के तशद्दुद करे मारे छो। पुलिस मूजिब जाल मुड़स विच में खुला बाद चिकटाण हलंदड़ हुई। गुजरियल ढी शाम जो बारड़े हैदर के संस मामो वालद अजहर के घर छड़े वो हो जिते जवाबदार अजहर ए संस भाव सुल्तान बारड़े हैदर के तशद्दुद जो निशानो बणाए कतल कर छो। पुलिस बिन्हीं जवाबदार गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर छी है।

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
1: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
0: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजे।

बंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
0: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।

0: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
1: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
0: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद। सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, मजबूत तने, लंबे और सेहतमंद मुंजरों के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
1: सोलर है बैटरी से डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर।
0: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद।
4: गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.1 सिंध जो आवाज उधंदा रहो उधंदा रहो।
1: इट्स 10:30 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डांट क्रीम, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन में डांट
3: दिए। जो सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए पोर्स के करे खत्म। डी कुदरती असली ग्लो, डी स्किन असली प्रोडक्ट बाय बायोकोन।
0: बुधो प्यार सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: It's 11:45 AM. This time check is
1: hum is
0: It's 10:45. It's time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुर अली मुल्क कुर G8 नेटवर्क ते
3: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: It's 12 PM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: वेनेजुएला में ज़लज़ले तबाही मचाए छी समय इमारतों पर 32 जन के फौत थे की तस्दीक हजारे मलबे हेठा दबियल किरियल इमारतों के मलबे के हटाने वो ऑपरेशन जारी कराकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कर वो वेनेजुएला में एक बे पुठिया आयल ज़लज़ले के बिन झटकन वे इमारतों के मिट्टी के ढेर में तब्दील कर छो ज़लज़ले की शिदत 7.2 और 7.5 रिकॉर्ड कई वही वेनेजुएला की वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी वो है इस्लामाबाद ईरान अमरीका जंग में टाके जो किरदार अदा करे खिते में अमन के यकीनी बणायो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार चयो है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है अमरीका ईरान जंग में अल्लाह पाकिस्तान का कम वरतो ए वजीर आजम फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम कयो हाने मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ वधी रहा है वेचो भर अमुन डां वधी रहो है ईरान कदें भी एटमी हथियार हासिल न कर सकंदो अमरीकी सदर ट्रंप चयो तो अमरीकी फौजी ताकत सब बहरी ए फिजाई सहूलतन का महरूम थी वो है तेहरान से गुजरल हफ्ते तारीखी मुहिदो किया है जो कें भी अमरीकी सदर न किया हो रोड़ी में तारीखी शम गुल मातम बाद नव डालन वाले ताजिए के कुल्हो डण दौरान साब साजन सब चार अजादार फोत केतरा ही बेहोश फोत थियल चयन अजादारन में बिन जन की सुणप कनकोट वासीम रान शेख ए नवीद शेख तौर कई वही रोड़ी में रात देर से कदीमी नव डालन वो मातमी ताजियो शम गुल की रस्म बाद शाह इराक इमाम बारगाह में बरामद थो मंजिल तरफ रवान दवान सिक्योरिटी का इंतजाम इंतई सख्त पुलिस से गड रेंजर्स पर मुकर थियल सिंध समेत समूरे मुल्क में नव मुहर्रम हराम के मौके से करबला के शहीदन के भेटा पेश करने सिलसिलो जारी नवाब शाह मीरपुर का सखर लालकाने डिवीजन में अजादारी जारी सबीलू भी लगाई व्यू सांगड़ उमरकोट थरपाकर नसरफोज ए बेन शहर में या हुसैन जो सदाऊं बुलंद शिकारपुर जकमबाद कंबर शहदादकोट घोटकी खैरपुर में सिक्योरिटी का इंतजाम सख्त किया व्या अजादारन पारा नुआखानी ए मातम कर करबला के शहीदन के भेटा पेश करने सिलसिलो जारी सिक्योरिटी सख्त टंड मस्ती वेझो बिंदुर में मामूली गाल तेड़ो लठ्यू लगन सब पीरसन कतल शेख तैयब कब्रस्तान अंदर बरल के कब्रुन दयाल नारे जा बारे के बिंदुर में झेड़ो थो झेड़े दौरान लठ्यू लगन सब 60 साल अलीदाद नारे जो मारज पो पुलिस बोर्ड पीर पीरसन जो लाश अस्पताल मुंतकिल कर
3: सन क्रॉप ग्रुप का आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6

0: गली नगर नगर
1: हाँ
0: देख लो करोड़ों सर जमीन से देखो अर्श पर हुसैनियों का राहबर जहां में हर जमा

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ deep skin beauty cream, vitamin E beads और जदीद micro beads formula आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किनी ग्लो, हर दिन का शो।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुन जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो
4: सुन जो आवाज उधर ना।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by.
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास. जिए FM की आवाज,
2: जिए FM नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: نوکری
1: हक सच जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़ उधर रहो
2: इट्स 1 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर
5: इमारतों पर 32 जन की फौत थियण की तस्दीक हजारें मलबे हेठां थकल किरियल इमारतुनि जे मलबे खे हटाइण वारो ऑपरेशन जारी कराकस जी इंटरनेशनल रिपोर्ट बि बंदि कयो वियो। विंदला में हिक ॿिए पुठियां आयल ज़लज़ले जे ॿिनि झटकनि वॾनि इमारतुनि खे मिटी जो ढेर में तब्दील करे छॾियो। ज़लज़ले जी शिदत 7.5 जी रिकॉर्ड कई वई।

पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। इस्लामाबाद ईरान ऐं अमरीका जंग में टाकरे खे ताज़ा करे खिते में अमुन खे यकीनी बणायो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलाह पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कमु कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी

0: या है सिंधी दिल ये मटियारे आवाज
1: ओ मुजरा बी दादा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: चीज न आहे की कड़ो नहीं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ
1: हर दिन GFM 88 सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 सिंध की आवाज।

0: अभी जिए यारी सिंध जो आवाज सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by.
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: आसिफ सरदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां विंदड़ा में ज़लज़ले सबबि जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार कयो। सदर आसिफ सरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में विंदड़ा जे अवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान दुनिया में अमुन ॾींदड़ मुल्क बणिजी वियो आहे। इस्लामाबाद, ईरान, अमरीका जंग में टाकरे जो किरदार अदा करे खिते में अमुन खे यकीनी बणायो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो विच ओभर ॾांहुं अमन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौज ताक़त सबबि बहरी ऐं फिज़ाई सौ थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आमना हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आमना हुरमज़ मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आमना हुरमज़ मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे। कर्बला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में अज़ादारी जारी। रोहड़ीअ मां बरामद थियल नोडलनि वारो ताज़ियो शमा गुल मंडी कबर खां मंज़िल तरफ़ रवां। वफ़ाक़ी करू वज़ीर मोहसिन नक़वी रोहड़ी पहुची जलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची ठटो सजावल बदीन टन मोहम्मद खान, हैदराबाद मठियाई टंडोलयार मीरपुर खास थरपारकर उमरकोट सांकर नवाबशाह चुरो दादू खैरपुर सखी जकमबाद कश्मोर

कानपुर लाड़काणो ऐं कंबर ज़िले जे नंढनि वॾनि शहरनि में आज़ादारी जारी। हर तरफ़ या हुसैन जूं सदाऊं, सिक्योरिटी सख़्त, पुलिस सां गॾु रेंजर्स बि मुक़रर थियल। रोड़ीअ में तारीख़ी शमगुल मातम दौरान साहिबु साजण सबबि चार आज़ादार फौत थियल। चइनि ॼणनि मां टिनि ॼणनि जी सुञाणप थी वई। कनकोड़ वासी इमरान शेख, नवीद शेख ऐं खैरपुर वासी नेमतुल्ला उर्फ़ काली सूमरूद नालनि सां कई वई। हिकु ॼणे जी सुञाणप न थी। इंतिज़ामिया मूजिबि पीउ ऐं गर्मी सबबि आज़ादार फौत थिया आहिनि।

निकाब तहत आहे। लाहौर हाईकोर्ट हक मोहर बाबति दरख़्वास्त ते फैसलो जारी करे छॾियो। अदालत फैसले में ॼाणायो आहे त निकाह थियण बाद निकाहनामे में हक मोहर जा तफ़सील न हूंदो त मुतालबे ते अदा कयो वेंदो। खुला औरत जो मुस्तक़िल शरई ऐं कानूनी हक़ आहे। खुला लाइ मुड़ुस जी रज़ामंदी ज़रूरी आहे। खुला बाद इदत मुकमल थियण ते औरत ॿियो निकाह करे सघे थी।

0: APM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream National Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों दवा यह महती का यहाँ वहाँ

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सत्रह सफरी जरदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पर आविंदला में जल्जले सबब जानी है माली नुकसान ते अफसोस जो इज़हार। सत्रह सफ जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक्त में विंदला के आवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है। पाकिस्तान की अकेलो किरण की कोशिश कंदड़ पान अकेला थी व्या आहिन। पाकिस्तान दुनिया में अमन डिंदड़ मुल्क बणजी व्यो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे नायब वजीर आजम इसहाक डार चयो आहे त पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अलावा पाकिस्तान खां कम वरितो। वजीर आजम ऐं फील्ड मार्शल जंग जे खात्मे लाइ ॾींहं रात कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो बि अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबब बहरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कैंप मां गुज़रण लाइ थी सघे थो। ईरान जे पासदारनि इंक़लाब चयो त अबन हुरमस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही खां तय थियल मफ़ा दारी जारी। रोडीअ मां बरामद थियल नओं डालन वारो ताज़ियो शमा गोल मंडी ख़बर खां मंज़िल तरफ़ रमादा
0: के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GFM 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज,
2: से निकली आवाज,
1: नेटवर्क।

0: सिंध के माथे का झूम
1: 88 नेट
0: की आवाज।
2: इट्स 3 PM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
0: अपना शहर अपना घर मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तब्दील कर ज़लज़ले जी शिदत 7.2 ऐं 7.5 रिकॉर्ड कई वई। ज़लज़ले जे वक़्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छॾी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब ज़लज़ले में ज़लज़ले सबब 10,000 खां 1,00,000 ताईं मौत थी सघनि थियूं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ज़लज़ले में ज़लज़ले सबब जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में ज़लज़ले जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी पिया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणिजी पियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अल्लाह पाक पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। वेझो पर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फ़ौजी ताक़त सबब बहिरी ऐं फिज़ाई सहूलतनि खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआहिदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमत मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि कदम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी पंडित तर्जमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाय सिंध में आजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नव नरन वो ताजियो शमा गुलमंडी खबर का मंजिल तरफ रवाना। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी के जायजो वरतो। कराची छठो सचावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियारी टंडो लयार मीरपुर खास सरपाकर उमरकोट सांगर नवाबशाह मसरूफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकम्बाद कश्मोर शिकारपुर लालकानो अंबर जिले के नंदन शहर में आजादारी जारी। सिक्योरिटी सख्त पुलिस संगत रेंजर्स भी मुकर थियल।

0: ओ चाचा, और तुसी मासूम छड़ के क्यों चले गए? और तेरे बटे औलाद दंदे
1: जी, दो मिनट ने हो रहे जी गल्ला कीती ना, डैडी उठ के पेट मारनी है दे
2: बणदी आ साले दी।
1: कर लो के उनु पांडा घोड़ी फेरे ते
2: हनी दी दिमागी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा किसी ना किसी नूं इहदी घरवाली।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GATRE FM।

0: चन का बारिश।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पाकिस्तान की अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पान अकेला थी पया आहिन। पाकिस्तान दुनिया में अमुनिंदड़ मुल्क बणजी पयो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार चयो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अल्लाह पाक पाकिस्तान का कम वरतो। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए डी रात कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वही रहा आहिनि। मुल्क में मुआशी इस्तेकाम तरफ वधी रहियो आहे। वेझो ओभर अमुन ॾांहुं वधी रहियो आहे। ईरान कॾहिं बि एटमी

हासिल न करे सकंदो। अमरीकी सदर ट्रम्प चयो आहे त अमरीकी फौजी ताकत सबब बहरी ऐं फिज़ाई सहूलतन खां महरूम थी वियो आहे। तेहरान सां गुज़िरियल हफ़्ते तारीख़ी मुआदो कयो आहे जेको कंहिं बि अमरीकी सदर न कयो हो। आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। आपने हुरमत मां गुज़र ईरानी बहरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जे पासदान इनकलाब चयो आहे त आपने हुरमत मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कंदासीं। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मफ़ामत ते अमल करे।

करबला जे शहीदन के भेटा पेश करण लाए सिंध में आजादारी जारी। रोड़ी में बरामद थियल नव नरन वो ताजियो शमा गुलमंडी खबर का मंजिल तरफ रवाना। वफाकी गुरु वजीर मोहसिन नकवी रोड़ी पहुंची जलूस की सिक्योरिटी के जायजो वरतो। कराची छठो सिटावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद मठियाई टंडो लयार मीरपुर खास सरबाकर उमरकोट सांगर नवाबचा नसोफो जामशरो दादू खैरपुर सक्कर घोटकी जकम्बाद कश्मोर शिकारपुर लाड़कानो कंबर जिले के नंदन शहरों में आजादारी जारी। हर तरफ या हुसैन जो सदाऊं बुलंद सिक्योरिटी सख्त पुलिस संगठ रेंजर्स प्रमुख रखियल।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इमरजेंसी लागू करे छी अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे मौजूद वेनेजुएला में जलसले सबब 10,000 का 1,00,000 ताई मौत थी सकन था। अमरीकी सदर पारा इदारन के वेनेजुएला की तकड़ी मदद करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारा वेनेजुएला में जलसले सबब जानी ए माली नुकसान के अफसोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चाहे तो पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेनेजुएला की अवाम से हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन से गड है।

सुबई घर वजीर जाल सलंजार प्रिया कुमारी जै धाड़ियल वट हुजन जो इतला हो वह मार है कच्छे में ऑपरेशन जारी है पर अं ती प्रिया कुमारी जो पतो पे ना सको कड़ी हुकूमत चाहिंदी त कंजो बार अगवा हुए यो बाजियाब न थे। रोहड़ी में मीडिया से गाराईदे जाल सलंजार हाने कच्छे में डोहारियन की दहशत न पर पुलिस की दहशत है। योम आशूर से समूरी सिंध में सिक्योरिटी जहा फूल प्रूफ इंतजाम क्या व्या है।

शिकारपुर सखर घोट की जेकाबाद कश्मोर शिकारपुर लाड़काणो ए कंबर जिले के नंढन वडन शहरों में आजादारी जारी हर तरफ याव सेन जो सदाऊं सिक्योरिटी जा सख्त इंतजाम। रोड़ी में तारीखी शमा गुल मातम दौरान सा बूसाठ जन सबब चार आजादार फोत थियल आजादार में ब कंदकोट ब पीर गोठवासी शामिल। कंदकोटवासी इमरान शेख नवीद शेख पीर गोठवासी नमतला उर्फ काली सुमरो नूर मोहम्मद दाड़क दम डेई छो इंतजामिया मूजिब पेर गर्मी सबब आजादार फोत थे। पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कदड़ पान अकेला थी व्या है। पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी व्यो है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे नायब वजीर आजम इसहाक डार है तो पाकिस्तान जिम्मेवार एटमी मुल्क है। अमरीका ईरान जंग में अल्लाह पाकिस्तान का कम वरतो। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल जंग के खात्मे लाए दी रात कम कयो। हाने मामला दुरुस्त रुख में वही रहा है। मुल्क भी माशी इस्तेकाम तरफ वधी रो है। अबना अरमुस के कें एक मुल्क की मिल्कियत तौर कबूल न कंदासी। खिते में जटादार अमन के यकीनी बनाईंदासी। अमरीका परडेही वजीर मार्को रूबियो है तो खिते में इतिहादियन की तरक्की ए खुशहाली चाहूं था। 30 जून ते टेक्निकल टीमों बीहर ईरान से एटमी प्रोग्राम ए पाबंदियों बाबत गालू कंदियों। आपना हुरमुस मां गुजरण लाए नव रस्तो कबूल न हुंदो। आपना हुरमुस मां गुजर ईरानी बहरिया जे ते कयल रस्तन ताई थी सके तो। ईरान जे पासारन इनकलाब चयो है तो अपना हुरमुस मां गुजरण लाए नव रस्तो कबूल न कयो वेंदो। अड़ो को भी कदम खतरनाक साबित थी सके तो। ईरानी पढ़े तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो है तो अमरीका ते थियल मफाहमत ते अमल करे।

0: सिंध मुख़्तलिफ़ इलाकनि में तकरारनि सां भॼणा क़तल एडिशनल SHO जो तशद थियल लाशत टंडो मस्ती वेझो कब्रिस्तान में वॾड़नि जे कब्रनि ते दुआ घुरण लाइ आयल नारी जा दुरियनि में जहिड़ो पीरसान अलीदार नारे जो क़तल इमदाद नारे जो ज़ख़्मी शेख तैयब कब्रिस्तान अंदरि वॾड़नि जी कब्रनि ते आयल नारी जा बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो थियो चक वेझो जतोई बिरादरी जी ॿिनि धुरियुनि में पुराणी तकरार सां जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल ॻोठ मज़ार कुर्सी में करीमण ऐं ग़ुलाम नबी जतोई जी धुरियुनि में जहिड़ो थियो फायरिंग जी ॾे वठि दौरान गोलियूं लॻण सबब बशीर जतोई मारिजी वियो मदे जी भरिसां ॾखण थाणे जे एडिशनल SHO अब्दुल्ला मीराणी जो तशदुद थियल लाश हथ ड्यूटी डॉक्टर जो चवणु आहे त अहलकार जे जिस्म ते तशदुद जा निशान आहिनि ज़हर सबब संदसि मौत थियो आहे ॾखण पुलिस चयो आहे त वाकिए जी हर रुख खां जांच करे रहिया आहियूं बलूचिस्तान जे डेरा मुराद जमाली में क़तल थियल टिन ॼणनि जे वारिसनि जो जेकबाद में एहतजाज क़ौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो गुज़िरियल ॾींहुं जवाबदार इसरार हजवाणी पंहिंजी ज़ाल कूंज सस मदीहा ऐं सोहरे यासीन वगड़ खे क़तल कयो हो वारिसनि जनाज़े नमाज़ अदा करण बाद टिन्ही मक़तूलनि जा लाश क़ौमी शाहराह ते रखी धरणो हयो मुज़ाहिरनि चयो त जवाबदार पंहिंजे साथियुनि जी मदद सां ज़ाल सस ऐं सोहरे खे बेगुनाह क़तल करे ज़ुल्म कयो आहे जवाबदार ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सत्तराई पंज रिकॉर्ड कई वही वेनेजुएला जी वक्ती सदर मुल्क में इमरजेंसी लागू कर छी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेनेजुएला में जिलजिले सबब फोतियुनि जो अघु 1,00,000 ताईं वञी सघे थो। अमरीकी सदर पारां इदारनि खे वेनेजुएला जी तकड़ी मदद करण जी हिदायत। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेनेजुएला में ज़लज़ले सबब जानी ऐं माली नुक़सान ते अफ़सोस जो इज़हार। सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक़्त में वेनेजुएला जी आवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे थो। मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान मुतासिरनि सां गॾु आहे। पाकिस्तान खे अकेलो करण जी कोशिश कंदड़ पाण अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन ॾींदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म सागदार चयो आहे त पाकिस्तान ज़िमेवार एटमी मुल्क आहे। अमरीका ईरान जंग में अला पाकिस्तान खां कम वरितो। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जंग जे ख़ात्मे लाइ ॾींहुं राति कम कयो। हाणे मामला दुरुस्त रुख में वञी रहिया आहिनि। मुल्क बि माशी इस्तेकाम तरफ़ वधी रहियो आहे। अब्रे हरमुस खे कंहिं हिकु मुल्क जी मिल्कियत तौर क़बूल न कंदासीं। खिते में जटादार अमन खे यकीनी बणाईंदासीं। अमरीकी परडे॒ही वज़ीर मार्को रूबियो चयो आहे त खिते में इतिहादियुनि जी तरक़ी ऐं खु़शहाली चाहियूं था। 30 जून ते टेक्निकल टीमूं ॿीहर ईरान सां एटमी प्रोग्राम ऐं पाबंदियुनि बाबति ॻाल्हियूं कंदियूं। अपने हरमुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न हूंदो। अपने हरमुस मां गुज़र ईरानी बैरिया जे तय कयल रस्तनि ताईं थी सघे थो। ईरान जी पासदारनि इनकलाब चयो आहे त अपने हरमुस मां गुज़रण लाइ नओं रस्तो क़बूल न कयो वेंदो। अहिड़ो को बि क़दम ख़तरनाक साबित थी सघे थो। ईरानी परडे॒ही तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त अमरीका तय थियल मुफ़ाहमत ते अमल करे।
2: जिसका नाना है नबी, बाप वली, कवली,

करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ सिंध में आज़ादारी जारी। तोड़ी मां बरामद थियल नव डालन वारो तारीख़ी मातमी जुलूस मुंडो खबड़ जे पिड़ तां बरामद थियण बाद मंजिल तरफ रवाना हुआ। करूअ जे जालसरजा रोड़ी पहुची जुलूस जी सिक्योरिटी जो जाइज़ो वरितो। कराची में कल नए मोहरम जो मर्कज़ी मातमी जुलूस मंजिल तरफ रवाना हुआ। टटो सजावल बदीन टंडो मोहम्मद खान हैदराबाद भटियाड़ी टंडो लयाड बिरबो खास सरफारकर उमरकोट सांगड़ नवाफिया नुशरफरोज जामशुरो दादू खैरपुर सक्कर गोठी कंबर जिले से नंढा आज़ादारी जारी। हर तरफ सख्त इंतजाम। टोड़ी में तारीखी शमा गुल मातम दौरान सा भूसाड़ सबब पोतियल चईप थी वही। पोतियन पीर गोट वासी शामिल कंदकोट वासी इमरान शेख नवीद शेख पीर गोट वासी नेमतला फकाली सुमरो नूर मोहम्मद लाड़क दम दिनो इंतजामिया मौजिब पे गर्मी सबब हज़ारदार फोत थे। झगड़ी में मेघवाड़ बिरादरी जहां घर रहने वाले वाक्य बाद सूबाई वजीर तारिक टालपुर मुतासरन वट पहुंची कैन सागे घर में रहने की इजाजत दई छी। सूबाई वजीर तारिक टालपुर झगड़ी में मुतासरन औरतन समेत सूबाई वजीर से मुलाकात करे कैन सागे घर में रहने की इजाजत दिनी। मुतासरन के संदन घर के थियल नुकसान लाए माली सहायता की भी खातरी। तारिक टालपुर जो चवण हो तो बजट इजलास सबब मसूफ हो इतने हुआ हा तो वाक्य पेश न थे हा कुछ दिन अग मेघवाड़ प्यादरी का घर खाली कराया गया हुआ।

की सनत, शब की तन्हाई में करता था गरीबों की मदद। है अतुल्लाह देख जब सिर पे लगी चेहरा हुआ खून में तर, फर्श गम सानी जहरा ने बिछाया।

गाता भूत के जिब्रील की फरियाद चली कैसा गिरिया है। अंबिया करते हुए बैन फलक से उतरे फर्श से अर्श तक।

0: गली नगर नगर
1: हाँ
0: देख लो करोड़ों सर जमीन से देखो अर्श पर हुसैनियों का राहबर जहाँ में हर जबान

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वेनेजुएला में जलजले तबाही मचाए छी सवे इमारतू पट फोतियन जो अंग वधी 164 थी वियो 1000 का वधिक जख्मी 10000 का वधिक मानू मलबे हेठा दबियल होण जो खदशो केरल इमारतन जो मलबो हटाण वारो ऑपरेशन जारी क्रॉकस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद कयो वियो वेनेजुएला में एक बे पुठियां आयल जलजले जे बिन झटकन वडियन इमारतन ते छडियो 70 रिकॉर्ड कई वई वेनेजुएला जी वक्ती सदर मुल्क में एमरजेंसी लागू करे छी अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे मूजिब वेनेजुएला में जलजले सबब पोती जो अंग एक लख का वधी सके तो अमरीकी सदर पारा इदारन के वेनेजुएला जी तकड़ी मदद करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां वेनेजुएला में जलजले सबब जानी माली नुकसान के अफसोस जे सार सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान मुश्किल वक्त में वेनेजुएला जी अवाम सां हमदर्दी जो इज़हार करे तो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान मुतासिरन सां गॾु आहे। पाकिस्तान के अकेलो करण की कोशिश कंदड़ पान अकेला थी विया आहिनि। पाकिस्तान दुनिया में अमन डींदड़ मुल्क बणजी वियो आहे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त पाकिस्तान